0: मेहमानों को खुश कर जाए। मजेदार लज्जतदार सा स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़, जब जी चाहे शौक से खाए,
1: कदम को
0: सेक के खाए तल के खाए। मजेदार लज्जतदार सा स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़।

0: भिक्षा भर जीता हूँ, लेकिन आज भी घर के अंदर रोशनी भी दब जाए।
1: You are listening to the CFLY Middle East radio program.